मीडियम वेव 254.45 मीटर और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की आठवीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। स्वीकारें अभिवादन, नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार होंगे जिनका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य

0: के गायज भजन के साथ ही प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडिया वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत, जिसमें आज का विषय है प्लास्टिक मल्च।
1: किसान भाई, खेती किसानी हमारे पास के मुख्य व्यवसाय है। अब जो ओम कौनो मेर से हानि हो जाए तो सब तरह के आर्थिक हानि के सामना मनई का कराए का परत है। किसान भाई, खेती किसानी का जो आधुनिक विधि से कीन जाए तो वहाँ अधिक लाभ मिल सकत है। जैसे बुवाई से पहले बीजोपचार कर ले, नई नई तकनीक के माध्यम से खेती कर ले, और सबसे निकही उपाय है प्लास्टिक मल्चिंग। एक ही उपयोग से उपराज में बढ़ोतरी तो होते है, साथ ही खेत का कौनो मेर से नुकसान नहीं हो। किसान भाई, प्लास्टिक मल्च खेती किसानी भर में नहीं, सब्जी भाजी फूल के खेती औरों में उपयोग की जा सकत है। ऐसे फसल की देखभाल आसानी से की जा सकत ही, और एक सीट का 2 या 3 फसल उगावे में उपयोग कर सकत है मनई। किसान भाई, वर्तमान समय में कार्बनिक फलवार बड़ी मात्रा में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पावे, जौने से लागत के कारण प्लास्टिक फलवार के प्रयोग करावे एक अच्छा विकल्प हो सकत है। या आसानी से उपलब्ध है, या एक जगह से दूसरे जगह में ले जाए में और बिछावायु में आसानी रहती है। यह सब गुण के कारण प्लास्टिक परिवार के उपयोग बढ़ ही रहा है। प्लास्टिक फिल्म का जब परिवार के रूप में उपयोग की जाता है तो ओका प्लास्टिक परिवार कहा था। यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध होने वाली है, कई मोटाई में और रंगों में उपलब्ध है। प्लास्टिक परिवार से कई लाभ होते हैं, जैसे मृदा में नमी संरक्षण और तापमान नियंत्रण होते हैं, खरपतवार के नियंत्रण होते हैं, हवा और पानी से माटी के कटाव में नियंत्रण होते हैं, पेड़ पौधन में वृद्धि होती और अनुकूल वातावरण मिलत है, और उत्पादकता में सुधार होते हैं, सिंचाई में पानी के बचत करत है। किसान भाई, प्लास्टिक कई रंगन में उपलब्ध है, लेकिन अधिकतर काली और सफेद रंग के प्लास्टिक के पलवार उपयोग में लाई जाती। एकर चयन खेती के जरूरत के अनुसार कीन जात है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, माटी तापमान में कम करे में या ज्यादा करे में, रोग नियंत्रण। सामान्यतः 9 से 120 सेंटीमीटर चौड़ी प्लास्टिक पलवार प्रयोग में लाई जाती है, जौने खेती किसानी में आसानी से उपयोग की जा सके। प्लास्टिक की मोटाई फसल के प्रकार और अवधि पर निर्भर कराती। अधिकतर मूंगफली के 7 माइक्रॉन, गन्ना के 50, अमरूद के 100, सब्जी में जैसे आलू है, बैंगन है, शिमला मिर्च है, इनमें 50 माइक्रॉन के उपयोग की जाते हैं। पलवार का बिजाई और रोपाई से पहले लगा दी जाते हैं। खेत में क्यारी बनावे से प्लास्टिक का बिछाए के किनारे से दबाए दी जाते हैं। यह क्रिया मजदूरन के द्वारा अगर कीन जाए तो वहाँ समय और पैसा दोनों अधिक लागत है। एका लगावे के खातिर वर्तमान समय में मशीना उपलब्ध है। पलवार बिछावत के समय पर हमका कई बातन का ध्यान में रखे चाहिए। पलवार प्लास्टिक के छेद में बड़े ब्यास के पाइप, हथौड़े और पंच के माध्यम से बनाए जाते हैं। फसल के लाने आवश्यक खाद और उर्वरक पलवार बिछावे से पहले जमीन में मिला दे के चाहिए। बीजन के बुवाई और रोपाई पलवार के छेद से सीधी करे के चाहिए। पलवार लगाई गई फसल में ड्रिप विधि से सिंचाई करे के चाहिए। पलवार का फसल के कटाई के बाद हटाए के और ओका अलग कर दे चाहिए। या मेर से खेती करे से हम कई तरह से लाभ ले सकी थी। आओ देखी, या मेर के खेती जो करब तो हमका लगभग मूंगफली में 60%, गन्ना में 50%, अमरूद में 25%, सब्जी में 30 से 40% उपज में बढ़ोतरी हो सका थी। आओ ये मेरे से बताई विधि से जो किसान भाई खेती करत ता खेती किसानी के व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ ले सका था।
0: कार्यक्रम कृषि संकेत में अभी आप सुन रहे थे प्लास्टिक मल्च संबंधी जानकारी। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम रामचरितमानस से पाठ का।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर और साथी के थे। आकाशवाणी रीवा से अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में।

आज सवेरे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा 7:30 उर्दू कार्यक्रम आईना आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रसारण समय है 9:30।

हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद उठाइएगा। सुबह 7:20 पर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कुछ सुनहरे गीत हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। सुबह 10:05 से कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय है शाम 7:21, जिसमें नियमित चर्चा के अलावा हम आपको सुनवाएंगे आर के तिवारी से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा अरहर व ज्वार की खेती।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। हैशटैग वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। पहले संस्कृत, तत्पश्चात हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों का न प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

0: فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हामनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स की सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani,

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
1: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामुखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा, और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है, और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो, नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश

0: ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और 2 एम्बुलेंस तथा 1 शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे हैं, बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगर पालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुंचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगर पालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
3: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीनें रखी हुई है वहां ले जाते हैं, वहां सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
2: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की 2 बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और क्षत्रिय धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़भेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीर जारा फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने, सुरों में पिरोया मदन मोहन ने, और आवाजें हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, वकील हुसैन और जावेद हुसैन की।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगली पेशकश इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, जिसे गाया है मिनमिने ने। इस गीत को लिखा है पीके मिश्रा ने और तर्ज बनाई ए आर रहमान ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 7:30 होने को है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: अनुभव आपको कुछ नया और बेहतर सिखाता है।
1: धीरे चलो, धीरे चलो।
0: एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
2: नमस्कार मनोज एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड लिसनर्स, just an idea that I would like to share with our listeners. You might be busy with everyday chores and life may get hard sometimes. You may feel disheartened, but always remember, the sun will always shine bright upon us no matter what, right? So with that, let's begin our program Aaj Savere. We have latest in national and international news, Metro City updates. Today, it's 29th of June 2026. We'll explore today's history in great detail. And we'll also pay our tributes in the ending segment of the program. So stay tuned with us till the very end. Let's start with the headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
3: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: In Gujarat, the 4th Vibrant Gujarat Regional Conference will begin today at GSFC University in Vadodara under the theme Regional Aspirations, Global Ambitions. Union Ministers Rajnath Singh, Manohar Lal Khattar, Mansukh Mandaviya, alongside key state ministers and global diplomats will take part in the 2-day conference, which aims to boost industrial development in central Gujarat region. We have a report from our correspondent.
4: The 2-day summit will host over 30 seminars with 151 experts and delegates from partner countries including Japan, Singapore, UAE, Ukraine and Rwanda. Focused on central Gujarat's economic growth, the event will focus on future-ready sectors like semiconductors, logistics, green hydrogen, quantum technology, AI in agriculture, aerospace and defense. A grand exhibition with over 150 stalls showcasing regional MSMEs, advanced tech startups and major enterprises like Amul and GFSC will be one of the main highlights of the event. Aparna Khut, Akashwani News, Vadodara.
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे का जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।
2: In our bilingual live phone-in program Public Speak at 9:30 p.m. tonight, we will bring an insightful discussion on growing small businesses and opportunities for entrepreneurs with Dr. Rajneesh, Additional Secretary and Development Commissioner, Ministry of MSME, Government of India. During the program, listeners can ask questions on the subject. So to participate, listen intently, simply dial the telephone numbers 011-233-10481. Alternatively, you can dial 23717117 9:30 p.m. onwards tonight.
0: अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जल डमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी।

0: अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जल डमरूमध से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मुकाबले में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच कोई भी गोल नहीं हुआ और मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। ये FIH हॉकी प्रो लीग में हॉकी विश्व कप से पहले भारतीय टीम का आखिरी मुकाबला था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
2: राइट, फर्स्ट लेट्स बिगिन विद चेन्नई। द डेथ टोल इन द अमोनिया गैस लीक राइजेस टू 16 टुडे। द एक्सीडेंट हैपेंड लास्ट संडे एट अ सी फूड प्रोसेसिंग कंपनी एट तिरुवल्लूर नियर चेन्नई। द लेटेस्ट वाज अ गेस्ट वर्कर कविता जुआंगा फ्रॉम ओडिशा। The gas leak after 83 workers. So far, 41 have been discharged from hospitals while 26 remain under treatment and medical observation. Among them, one patient is on ventilator support, 9 are on oxygen support through nasal support, and 16 are in stable condition. And of the 26 patients, 25 are women. Another update from Chennai.
1: Ji.
2: The Tamil Nadu police arrested a smuggler in narcotics, gold jewellery, vehicles and other incriminating materials. They were seized. Three people were arrested on 28th of June for transporting narcotics on 20th June. Police seized 26.35 grams of methamphetamine, two LSD stamps, 5.59 grams of MDMA tablets, 15 ATM cards, three mobiles and the car used in the offence.
1: अब दिल्ली की खबर। दिल्ली विधानसभा में यूथ आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत आयोजित छात्र संसद में दिल्ली के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें संसदीय लोकतंत्र के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिला। दिल्ली विधानसभा ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को देखकर, संसदीय परंपराओं को समझकर और विधानसभा परिसर का दौरा करके छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यों और देश को मजबूत बनाने में नागरिकों की अहम भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1 जुलाई को दिल्ली सरकार में ई ऑफिस व्यवस्था लागू होने का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी कामकाज अधिक तेज, पारदर्शी और जवाबदेह हुआ है, जिससे लोगों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
2: Well, we will now head to Bengaluru, Manoj. First update. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has declared crackdown on outlets selling tobacco laced with banned intoxicating substances. He was addressing the audience at the Nasha Mukt Bharat Abhiyan launched as part of 31st Foundation Day of Rajiv Gandhi University of Health Sciences in Bengaluru yesterday. He noted that alarming reports are received by him that certain gutka and pan masala products sold in the state are mixed with drug-like substances. He asserted that his government will not hesitate to slap a blanket ban on the sale of all types of gutka, pan masalas and chewing tobacco across the state if narcotics are mixed with them. He opined that a drug-free Bharat is impossible without impenetrable borders, he opined that, from where he alleged the drugs are smuggled in. He cautioned students not to fall prey to the drugs as it may jeopardize their dreams of becoming doctors. He called upon them to shun peer pressure and learn to say no to drugs. He advised that for momentary pleasure, one can destroy their future. All right. Another update from Bengaluru.
1: Gigi.
2: In the DACSS Maharaja Trophy T20 tournament being held in Hubballi, coastal Bengaluru registered an emphatic 8-wicket victory over Shivamoga Yodhas yesterday. And due to rain, the match was reduced to 17 overs a side. It was T20, you see. Batting first, Shivamoga Yodhas managed only 113 runs for the loss of 8 in their allotted 17 overs. Coastal Bengaluru reached the target with comfort in just 12.4 overs, losing just 2 wickets. And this win helped Bengaluru.

0: take the second position in the points table below Bengaluru Blasters, who continue to dominate at the pitch.
1: अब महाराष्ट्र मुंबई की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को पालघर जिले के तारापुर में आदिवासी समुदायों में वन अधिकारों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आपली जमीन आपल्या हक नामक कॉमिक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री फडणवीस ने कहा कि कॉमिक का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपने परिवारों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार सुरक्षित करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और कानूनी रिकॉर्ड को अद्यतन करके आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने उचित अधिकारों तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री गणेश नाइक और नितेश राणे, सांसद डॉक्टर हेमंत सवारा, विधायक राजेंद्र गावित और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र की एक और खबर। महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अनिवासी भारतीय मामलों और जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गावड़े ने कल कहा कि महाराष्ट्र में दंत चिकित्सा सेवाओं, दंत पर्यटन अनुसंधान तथा विकास और दंत उपकरण निर्माण के लिए वैश्विक निवेश केंद्र बनने की अपार क्षमता है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ओरल स्वास्थ्य देखभाल पर एक विशेष सत्र और गोलमेज सम्मेलन में श्री गावड़े ने कहा कि राज्य सरकार ओरल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करते हुए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्यक्रम में भारत और विदेश के नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र को ओरल स्वास्थ्य देखभाल और दंत पर्यटन के लिए एक अग्रणी गंतव्य बनाने के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा तथा असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पर आज विधानसभा में चर्चा होगी। राज्य सरकार 1 जुलाई को नेताजी इंडोर स्टेडियम में अन्नपूर्णा योजना के लिए एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार लगभग 12,000 महिला लाभार्थी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगी। उसी दिन अन्नपूर्णा योजना के तहत धनराशि राज्य भर में 1,05,00,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाएगी। कुल लाभार्थियों में से 12,000 लाभार्थी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां मुख्यमंत्री स्वयं कुछ लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना के चेक सौंपेंगे। और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
0: सो मनोज, आई विल बी बिगिनिंग विद चेन्नई। सो चेन्नई इज लाइकली टू विटनेस अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द टेम्परेचर्स आर एक्सपेक्टेड टू रेंज बिटवीन मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 37 डिग्री सेल्सियस। Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius in Hyderabad. So this was all about the weather.
1: जी. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 29 जून है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
0: Well, yes. Today it's 29th of June. We are taking you way back in time in the year 1613 first.

0: London's famous Globe Theatre, associated with William Shakespeare, was destroyed by fire during a performance of Henry VIII.
1: 1855 में आज ही के दिन ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली समाचार पत्रों में से एक द डेली टेलीग्राफ का लंदन से पहली बार प्रकाशन हुआ।
0: In 1880, France annexed Tahiti, bringing the Pacific island under French colonial rule. In 1956, Federal Aid Highway Act of 1956 was signed by Dwight D. Eisenhower, launching the US Interstate Highway System.
1: 1974 में आज ही के दिन इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की राष्ट्रपति का पदभार संभालकर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 2005 में आज ही के दिन भारत और अमेरिका में समग्र 10 वर्षीय समझौता हुआ।
0: In the year 2007, launch of the first iPhone took place in the United States, revolutionizing the smartphone industry.
1: 2007 में आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फ्यूचर कप श्रृंखला के दूसरे मैच के दौरान 15,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। और 2014 में आज ही के दिन साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज जीती।
0: In 2020, the government of India banned 59 Chinese mobile apps. This includes TikTok, citing national security concerns.
1: और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है माइकल मधुसूदन दत्त की। उनका जन्म 25 जनवरी 1824 को जसोर अविभाजित भारत में हुआ था। वे बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और नाटककार थे। उनका हिंदू नाम मधुसूदन दत्त था, किंतु ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और एक ईसाई युवती से विवाह के बाद उनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त हो गया। माइकल मधुसूदन दत्त बंगाल में अपनी पीढ़ी के उन युवकों के प्रतिनिधि थे जो तत्कालीन हिंदू समाज के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से क्षुब्ध थे। वे अतिशय भावुक व्यक्ति थे। ये भावुकता उनकी आरंभ की अंग्रेजी रचनाओं तथा बाद की बांग्ला रचनाओं में भी व्याप्त हुई। आपकी मुख्य रचनाएं शर्मिष्ठा, पद्मावती, कृष्ण कुमारी, तिलोत्तमा, मेघनाथ, वध काव्य, वज्रांगना, वीरांगना आदि हैं। आइए सुनते हैं उनका लिखा नाटक मेघनाथ वध काव्य का के मंचन का कुछ अंश।
2: অতুল জগতে দোহে বামাকুলোত্তমা প্রমিলা পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলি শয়ন মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে গাইল অলি পরিমল আসে গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চসারে বাজিল রাক্ষস বাদ্য
0: Well, right, Michael Madhusudan Dutt, the rebel who wrote poetry like thunder and lived life like a storm. Well, Bengal's first true literary rock star, the man who broke rules, broke traditions, and rebuilt Bengali literature from the ashes. From sonnets to epics, from heartbreak to heroism, he turned every line into history.
1: Jee. आज पुण्यतिथि है दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की। उनका जन्म 31 जुलाई 1907 को गोवा में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। गणित के अतिरिक्त भारत के इतिहास और संस्कृति में भी इनका अतुलनीय योगदान रहा है। दामोदर धर्मानंद जी ने 16 वर्षों तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: Today listeners, we are also remembering Ashutosh Mukherjee. And well, we are paying heartfelt tribute to him, his immense contributions to higher education, intellectual awakening and the advancement of Indian scholarship continues to inspire generations. His legacy remains deeply connected with the spirit of academic excellence and cultural renaissance in Bengal and beyond. I was telling you about Sir Ashutosh Mukherjee.
1: आज पुण्यतिथि है के जी सुब्रमण्यम की। उनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल में हुआ था। वे भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे। वे भारतीय आधुनिक कला के प्रणेताओं में शामिल रहे थे। वर्ष 2012 में के जी सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, 2006 में पद्म भूषण तथा

0: आज पुण्यतिथि है मेहता लज्जा राम शर्मा की। उनका जन्म 1863 को हुआ था। वे हिंदी भाषा के पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 13 उपन्यास हैं। पाठकों की दृष्टि में वे एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। लज्जाराम मेहता ने हिंदू को न केवल लोकप्रिय बनाया, बल्कि उसमें मध्यम वर्ग की समस्याओं का चित्रण भी किया।
1: Well, today listeners, we're also remembering Prasanth Chandra Mahalanobis, pioneering statistician, scientist and planner who made a lasting contribution to India. Well, he founded the Indian Statistical Institute and introduced the Mahalanobis distance. This is still widely used in statistics, data science and machine learning. And National Statistics Day, it is observed to create awareness and mark the birth anniversary of Prasanth Chandra Mahalanobis, one of the country's greatest statisticians and widely regarded as the father of Indian statistics. He also played a key role in India's economic planning after independence. And well, we are also remembering his vision, his dedication and remarkable contributions. His legacy continues to inspire statisticians, researchers and students also, Manoj. And he is widely remembered as the father of Indian statistics, I told you. And this day, National Statistics Day, it is observed to create awareness about the importance of statistics in policy making, in governance, economic planning and national development as well. So in today's data-driven world, statistics helps governments make informed decisions and monitor development, improve public services as well and address social and economic challenges effectively. And all the credit goes to this pioneer, Prasanth Chandra Mahalanobis.
0: Ji. आज जन्मदिन है कार्तिक राजा का। वे एक भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक हैं। वे मुख्य रूप से तमिल फिल्मों में काम करते हैं। साथ ही 2001 की जैकी श्रॉफ मनीषा कोइराला स्टारर फिल्म ग्रहण के अलावा कुछ हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने संगीत दिया है। उन्होंने फिल्म पांडियन से एक फिल्म संगीतकार के तौर पर शुरुआत की और वे मुख्य रूप से 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म ग्रहण का एक गीत।

0: आज जयंती है शैल चतुर्वेदी की। उनका जन्म 29 जून 1936 को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। वे भारत के एक हिंदी कवि, व्यंग्यकार, हास्य कलाकार, गीतकार और अभिनेता थे। वे 70 और 80 के दशक में अपने राजनीतिक व्यंग्य के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरीज में चरित्र अभिनेता के तौर पर काम किया। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता और उनके द्वारा लिखा गया भजन।
1: बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है, गाय से पूछो। गाय कहेगी पानी पी रही हूँ तो पानी ही दूंगी, दूध वाला मेरे प्राण ले रहा है मैं तुम्हारे लूंगी।

के मंदिर में। आज जयंती है रासीपुरम सुब्रमण्यम अय्यर मनोहर की। उनका जन्म 29 जून 1925 को नमक्कल में हुआ था। वे एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने हीरो, विलेन और कॉमेडी किरदारों जैसी कई तरह की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। आइए सुनते हैं उनका एक गीत।

0: और अब समय आपसे विदा लेने का हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया।

0: और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल हैं। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के

0: पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, UAE, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय MSME, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं GFSC जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। TET परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से

0: से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112311 07 0112317 16 0112317 16 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, माँ को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड्स सेशल्स नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज गेस्ट ऑफ ऑनर, ऑल्सो होल्ड्स टॉक्स विद हिज मॉरिशियस काउंटरपार्ट नवीन चंद्र रामगुलाम। United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for

ही हैं जिन्होंने हमें मोहब्बत करना सिखाया, जिन्होंने हमारे आंसुओं को पनाह दी और जिन्होंने जिंदगी को एक नया नजरिया दिया। तो आइए यादों के इस सफर पर हम और आप एक साथ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। दोस्तों, जब हम सुनहरे दौर की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आती है सादगी और वो बे इंतहा मोहब्बत

जो उन गीतों में हुआ करता था। तो आज की इस महफिल का आगाज हम एक ऐसे ही बेहद खूबसूरत और सुकून देने वाले नगमे से करने जा रहे हैं जो सीधे आपके दिल को छुएगा। तो सुनिए और खो जाइए इस सुरों के समंदर में।

दोस्तों, जब हम आज के दौर के प्रेम गीतों को सुनते हैं तो अक्सर उनमें एक जल्दबाजी, एक शोर और एक जिस्मानी कशिश ज्यादा नजर आती है। लेकिन एक दौर वो भी था जब मोहब्बत में रूहानी पाकीजगी हुआ करती थी, जहां महबूब की तारीफ करने के लिए किसी तामझाम की जरूरत नहीं थी, बल्कि कुदरत के सबसे पवित्र तत्वों की उपमा दी जाती थी। एक ऐसा ही बेहद मुकद्दर और रूहानी गीत साल 1968 में आई फिल्म सरस्वती चंद्र का है। जरा सा सोचिए, जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की तुलना महकते हुए चंदन से करता है, तो उसमें वासना नहीं बल्कि एक अगाध श्रद्धा और समर्पण झलकता है। कवि आनंद बख्शी साहब के लिखे इस गीत की एक एक पंक्ति जैसे सीधे आत्मा में उमड़ जाती है। मुकेश जी की मखमली और दर्द भरी आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। कल्याण जी आनंद जी की रची इस अमर धुन में जो ठहराव है, जो सुकून है, वो आज के संगीत में कहीं ढूंढे नहीं मिलता श्रोताओं। तो आइए अपनी धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिए।

और खो जाइए सादगी, समर्पण और पवित्र प्रेम के इस महासागर में। और अब सुनिए मुकेश की आवाज में ये बेहद सुरीला नगमा।

श्रोताओं, कहते हैं कि मोहब्बत का रास्ता कभी आसान नहीं होता। इसमें खुशियों के चंद लम्हे होते हैं तो इम्तिहानों का एक लंबा सिलसिला भी होता है। लेकिन सच्चे चाहने वाले वो नहीं होते जो मुश्किलों से डरकर कदम पीछे हटा ले, बल्कि सच्चे आशिक तो वो होते हैं जो महबूब से मिले हर दर्द, हर शिकवे और हर तड़प को भी हंसकर गले लगा लेते हैं। एक ऐसा ही अमर तराना साल 1981 में आया था, जिसने प्यार में तड़पने को भी एक बेहद खूबसूरत और सुरीला एहसास बना दिया। आरडी बर्मन साहब की जादुई धुन, आनंद बख्शी साहब के दिल को छू लेने वाले जज्बात, और जब इस पर किशोरदा की वो बेबाक आवाज

आवाज और लता दीदी का वो सोज मिला तो सचमुच इतिहास रच गया। ये गीत एक ऐलान है कि तुम चाहे जितने सितम ढालो हमारी मोहब्बत कम नहीं होगी। तो आइए यादों के झरोखों से निकालते हैं इस कशिश भरे नगमे को और डूब जाते हैं सुरों की इस महफिल में। पेश खिदमत है ऐसा ही एक सदाबहार नगमा।

दोस्तों, जब दो अजनबी एक दूसरे के करीब आते हैं और वो करीब आना जब मोहब्बत में बदल जाता है तो कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा होता है। प्यार का सबसे मुकम्मल और खूबसूरत मुकाम भी वही है जहां दो अलग अलग इंसान इस तरह एक हो जाएं कि उनके बीच का फासला मिट जाए, जहां धड़कने दो सीनों में धड़के लेकिन उनकी रफ्तार और उनकी आवाज एक हो जाए। आज से ठीक कुछ दशक पहले साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ में इसी रूहानी एहसास को शब्दों और सुरों में बेहद संजीदगी से पिरोया गया था। महान गीतकार साहिर लुधियानवी साहब की कलम से निकले वो अल्फाज और संगीतकार रवि जी की वो लाजवाब धुने, जब तलत महमूद साहब की आवाज और आशाताई की मखमली गायकी ने इस गीत को अमर बना दिया। ये गीत गवाही है उस सच्चे और पाकीजा इश्क की, जहां दुनिया की कोई ताकत दो चाहने वालों को जुदा नहीं कर सकती। तो आइए

आज की इस महफिल की रूमानियत को थोड़ा और बढ़ाते हैं और महसूस करते हैं मोहब्बत की इस पाकीज़ा खुशबू को। सुनिए एक और सदाबहार नगमा, दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक ही है।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: दोस्तों, वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, जमाने बदल जाते हैं, तकनीक बदल जाती है और जीने का अंदाज भी बदल जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर वक्त का कोई पहरा नहीं होता। वो हर दौर में नई, हर दौर में ताजा और हर दौर में उतनी ही हसीन लगती हैं। हमारे सिनेमा के सदाबहार गीत भी कुछ ऐसे ही हैं। ये महज कुछ धुने या शब्द नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी के सुख दुख, हमारी मोहब्बत और हमारी यादों की वो तिजोरी हैं जिसे

जब भी खोलो एक अनमोल खुशबू बिखर जाती है। और आज आकाशवाणी रीवा के फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम एक ऐसा ही पिटारा लेकर आप सबके बीच में इस समय उपस्थित हैं। और आज की इस महफिल में हम और आप मिलकर वक्त की सुइयों को भी थोड़ा पीछे घुमाएंगे और यादों के उस सुनहरे गलियारे में चलेंगे जहां सिर्फ और सिर्फ सुरीला सुकून है। श्रोताओं, सुबह धीरे धीरे धीरे दिन की तरफ बढ़ रही है और माहौल में एक अजब सी गर्मी भी है। ऐसे में अगर दिल के तार न छुए जाएं तो बात अधूरी सी रह जाती है। पुराना दौर वो दौर था जब मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत ठहराव हुआ करता था, जहां प्यार का इजहार करने के लिए सिर्फ एक चंचल चितवन या दिल की धड़कन का साज ही काफी होता था। उस दौर के गीतकारों ने जब उपमाएं लिखी, जैसे हमने आपको अभी कुछ देर पहले ये गीत सुनवाया चंदन सा बदन, या फिर दो दिल धड़क रहे हैं जैसा रूहानी सच बयां गीत, तो वो गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आजकल के शोर शराबे वाले संगीत के बीच जब हम उन पुराने रूमानी तरानों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस तपती धूप में बरगद की ठंडी छांव मिल गई हो। तो आइए सुरों के इस रूमानी सफर को आगे बढ़ाते हुए डूब जाते हैं उस दौर के पाकीजा मोहब्बत में।

इस लाजवाब सुरमई माहौल ने तो जैसे मन छू लिया। लेकिन ठहरिए श्रोताओं, हमारा ये दौर केवल मासूम मस्ती, अल्हड़पन और बेबाकी का ही नहीं था। ये सदाबहार दौर संजीदगी और वो आंसुओं का दौर भी था जो बहुत ही सादगी से अपने मन की बात कह जाता था। दोस्तों, आप सब जानते हैं, जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं होती। उतार चढ़ाव, जुदाई, शिकवे और तन्हाई भी इसी जिंदगी के हिस्से हैं। लेकिन हमारे पुराने दौर के फनकारों की महानता देखिए, उन्होंने दिल के दर्द को भी इतना सुरीला बना दिया कि इंसान रोते रोते भी गुनगुनाने लगता है। जब रफी साहब का दर्द जबान पर आए, मुकेश जी का सूफियाना ठहराव, वो दर्द भरी आवाज, या लता दीदी और आशा ताई के आंसुओं की खनक हमारे कानों में पड़ती है, तो वो तन्हाई का दर्द भी एक वरदान लगने लगता है। तो आइए कुछ पल उन जज्बातों के नाम भी करते हैं जो सीधे हमारे दिल के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करते हैं।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, हम फिर उपस्थित हैं आप सबके बीच, वही दौर, वही जमाना और वही सदाबहार नगमे लेकर। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि दुनिया में सब कुछ सोच समझकर और योजना बनाकर किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत कभी योजना बनाकर या सोच समझकर नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। और जब एक बार दिल से दिल का तार जुड़ जाता है, जब एक बार ये लागी लग जाती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई रस्म, कोई दीवार इसे तोड़ नहीं पाती। फिर इंसान दुनिया की परवाह करना छोड़ देता है। अगर बात करें हम साल 55-60 के दशक की, तो साल 1959 में आई फिल्म काली टोपी लाल रुमाल में मोहब्बत की इसी जिद और इसी अटूट विश्वास को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया था। संगीतकार चित्रगुप्त जी की रची वो बेहद सुरीली धुन, मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे वो जज्बाती बोल, और जब इस पर मोहम्मद रफी साहब की वो पाकीजा आवाज और लता दीदी, जी हां, सुर साम्राज्य का वो अमर सुर मिला, तो ये गीत हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार हो गया। श्रोताओं, ये गीत एक वादा है, एक कसम है कि अब चाहे ये समाज रूठ जाए, चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए, या चाहे जान ही क्यों न चली जाए, जो दिल लगा लिया वो अब कभी छूटेगा नहीं। तो आइए अब इस महफिल को प्यार की इसी शिद्दत से सराबोर करते हैं, सुनते हैं वही, जी हाँ, 59 का वो जादुई और सदाबहार तराना, लागी छूटे ना अब तो सनम।

श्रोताओं, कभी कभी मन करता है ना कि इस शहर के शोर, कंक्रीट के जंगलों और रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर कहीं निकल जाएं, किसी एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों को छूकर आती हुई ठंडी हवाएं सीधे हमारी रूह से बात करें, जहां शाम का धुआं वादियों में इस तरह घुले मानो किसी सूफी फकीर ने धुन रमाई हो। मोहब्बत जब चार दीवारों से निकलकर कुदरत के इस विशाल आंगन में पहुंचती है श्रोताओं ना, तो वो सिर्फ दो इंसानों के बीच की बात नहीं रह जाती। फिर तो ये ऊंचे पर्वत, ये बलखाती नदियां और ये खामोश वादियां भी उस मोहब्बत की गवाह बन जाती हैं। सन 60 के दशक की एक फिल्म वासना आई और उसके गीत ऐसे ऐसा लगा हो कि आपके दिल की बात कह दी गई, संगीत ऐसा कि अपने ही एहसासों को धुनों में ढाल दिया हो, और फिर वो संगीत ऐसा कि पहाड़ों का पूरा एक कैनवस हमारे सामने रखा हो। तो चलिए आज की शाम और उसी अंदाज में शाम को महसूस करिए जब इस तपती दोपहर में हम सभी जल रहे हों। तो कुछ पल ऐसे भी कि अपनी आंखें बंद करिए, महसूस कीजिए कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हों और शाम ढल रही हो। नीचे वादियों में शाम का वही धुंधलका धीरे धीरे धीरे उतर रहा हो और दूर से एक सुरीली आवाज तैरती हुई आपकी तरफ आ रही है। और अब महसूस कीजिए आकाशवाणी रीवा से वही सदाबहार नगमा और उसी सदाबहार नगमे के जादू को।

श्रोताओं, शुरू का ये कारवां जब आगे बढ़ता है तो मोहब्बत के कई रंग हमारे सामने आते हैं। कभी इश्क में समर्पण का ठहराव होता है तो कभी जुदाई की तड़प। लेकिन साहिबान, मोहब्बत का वो पहला लम्हा कितना मुकद्दर और नाजुक होता है, जब दिल को खुद नहीं पता होता कि कब किसकी बेइंतहा आदत हो गई, जहां इंसान खुद को रोकने की लाख कोशिश करता है पर दिल की धड़कनें उसके अख्तियार में नहीं रहती हैं। और श्रोताओं, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गीत इसी की गवाही है। गवाही है उस मोड़ की जहां दोस्ती खामोशी से मोहब्बत की दहलीज पर कदम रखती है। तो आइए रूहानी जज्बातों के इस सिलसिले में थोड़ा सा अल्हड़पन घोलते हैं और सुनते हैं ये सदाबहार तराना।

दोस्तों, शुरू के इस पाकीज़ा सफ़र में जहां हम कभी उमंग से रूबरू हुए तो कभी शरारत से, लेकिन साहिबान संगीत का एक और मुकद्दर रूप भी है जिसे हम ठहराव कहते हैं। एक ऐसा ठहराव जहां पहुंचकर दिल का शोर थम जाता है, सांसों की रफ्तार मध्यम हो जाती है और रूह खुद ब खुद ईश्वरीय सुकून की चादर ओढ़ लेती है। साल 50 के दशक में आई फिल्म मालिक का एक ऐसा ही अमर और सदाबहार नगमा है जो हमें इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच रुकना और संभलना सिखाता है। और जब इस बेहद संजीदा नगमे को हेमंत कुमार साहब की वो सागर जैसी गहरी गंभीर आवाज ने अपनी आवाज दी तो वो ईश्वरीय हो गई, रेशमी सुर मिला और ये गीत एक गीत नहीं रहा बल्कि आत्मा का संगीत बन गया।

ये गीत गवाही है उस अवस्था की जहां इंसान अपनी आंतरिक शांति से संवाद करता है, मन धीरे धीरे धीरे गाता है। तो आइए इस बज में थोड़ी सी खामोशी, थोड़ा सा रूहानी सुकून घूलते हैं और अपनी धड़कनों को थाम कर सुनते हैं ये सदाबहार तराना।

श्रोताओं, वक्त की एक सबसे बड़ी खूबी भी है और इसे खामी भी कहेंगे कि ये कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। हमारी आज की ये मुकद्दर महफिल भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। हम अपने साथ यादों का वो कारवां, जज्बातों की वो खुशबू और इन सदाबहार तरानों का वो रूहानी सुकून भी लेकर साथ जा रहे हैं जो ताजिंदगी हमारे साथ रहेगा। और इस महफिल को अपनी सादगी और कद्रदानी से गुलजार करने के लिए मैं डॉक्टर आरती तिवारी आज आप सभी का आकाशवाणी रीवा से शुक्रिया अदा करती हूँ। और चलते चलते हम इस सदाबहार नगमे को तो सुनेंगे ही, लेकिन बशीर बद्र साहब के इन पंक्तियों से आप सभी से विदा लेती हूँ कि कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही, तुम न होते न सही, जिंदा तुम्हारा कोई नगमा तो हमारे पास होता। तो आइए चलते चलते सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे गीत। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। उर्दू कार्यक्रम आईना कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

आकाशवाणी भोपाल की जानिब से हफ्तावार उर्दू प्रोग्राम आईना को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त जावेद। इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। सामईन, आज की हमारी बातचीत का मौजू है अदब और इंसानी हुकूक के ताल्लुक से। अजीज दोस्तों, अदब और इंसानी हुकूक के दरमियान गहरा और तारीखी ताल्लुक है। अदब न सिर्फ माशरे की अक्कासी करता है बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक, आज़ादी और मसावात का सबसे बड़ा अलमबरदार भी रहा है। आज़ादी इजहार और शऊर की बेद

दोस्तों अभी आप गुलूकार शंकर दास गुप्ता की आवाज में गजल समात फरमा रहे थे, जिसमें कलाम था जिगर मुरादाबादी का। सामईन, शायरी अपने दौर के हालात, मसाइल और तहजीबी

एक बहन कवारी है। ये भी शेर मुलादा फरमाए के, ऐ खुदा

خدا مقدر میں اس کے بھی

खत्म हो चुका लेकिन

amo a da buquetioroco. Gasu dalu

लिए शेर पढ़ता हूं कि जब मांगने से अपना हमें हक नहीं मिला, जब मांगने से अपना हमें हक नहीं मिला, मजबूर हो के हमने भी खंजर उठा लिए, मजबूर हो के हमने भी खंजर उठा लिए। और ये शेर सुने मुलायदा फरमाए के जिंदा हूँ मैं खुदा के करम से ऐ दोस्तों, जिंदा हूँ मैं खुदा के करम से ऐ दोस्तों, तुमने

तारो कशु में जितने तीर थे सब आजम। और हजरत ये शेर भी मुलादा फरमाए था, मुलादा करें के बच्चे मेरी गरीबी का रखते हैं यूं भरम, बच्चे मेरी गरीबी का रखते हैं यूं भरम, रोटी के टुकड़े रात के बासी थे खा लिए, रोटी के

टुकड़े रात के बसी थे खालिए, दुनिया की आखरत में दुनिया की आखरत की भलाई इसी में है, दुनिया की आखरत की भलाई इसी में है, हर गिज़ फ़कीर।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का

लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और एमपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ एसआरसीसी भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आरंभ करते हैं इस भजन से, गायक स्वर शोभा गुट्टू का है।

0: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
2: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
1: देखा
0: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
2: अब क्या करोगे?
0: फ्री वाईफाई है ना?
1: बुद्धू सुधर जा।
2: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
0: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
2: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: आकाशवाणी रीवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। अगली पेशकश है सईद राही का कलाम, जगजीत और चित्रा सिंह की आवाज में।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है हमारा अगला प्रसारण, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। उम्मीद, जी हाँ मित्रों, हमारी जिंदगी की समूची बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी हुई है, उम्मीद। जैसे रिश्तों की डोर हो, संबंधों की गहराई हो, प्रकृति का संतुलन हो, सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी पर निर्भर है। और ऐसा ही एक शब्द है इंतजार। उम्मीद और इंतजार का दामन थामे हम एक बार फिर मनोहार लगा रहे हैं बादलों से कि वो भी बरसें। क्यों हमें इतना तरसा रहे हैं? हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश ने दस्तक नहीं दी है। इस इंतजार को और कितने दिन, इस इंतजार की घड़ियां और कितनी लंबी होगी? हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतजार जल्द से जल्द खत्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नजर आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी।
2: ये सर, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
1: अशोक जी,
2: जी
1: जबलपुर से बोल रहे हैं
2: सर। आप,
1: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
2: मैं भी अच्छा हो गया सर, आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
1: जी हाँ जी हाँ, बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
2: मौसम तो धूप ही है सर, बहोरा अड़तीस चल रहा है, बारिश का कई नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
1: अच्छा, सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
2: कहीं कहीं बस जाता है छोटा मोटा।
1: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
2: जी सर, आए जमाजम बारिश है, उसका इंतजार है।
1: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतजार है जिसके जरिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी बताइए, कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकाले?
2: अब आज आए तो पर्वत के काली घटा टकराई चांदनी मूवी का है।
1: अच्छा जी,
2: आशा घोषणा की आवाज।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी जी जी जी, मैं रमेश नायक ग्राम खेरोकला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी।
1: जी जी हाँ,
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ जी। सर आप कौन बोल रहे हैं?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम।
1: शिवम, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी
0: जी।
1: अच्छा, और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं, मौसम?
1: अब आप तो गर्मियों के ही चल रहे हैं जो है। अभी तो यहाँ बारिश नहीं हुई है, जो है बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की दस्तक नहीं हुई है?
1: नहीं, अभी यहाँ एमपी में तो सुन रहे कि वहाँ हो चुकी है इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो नहीं है, लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी, उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए, हम
1: तमाम भाई क्या है समाचार? दोस्त यार
0: बहुत बढ़िया है। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की बरसात हो।
1: बहुत शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी जी जी।
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा है ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड। आप एक गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी बताइए।
1: एक यार एक अनमोल मोती फिल्म है जो है।
0: हाँ हाँ जी
1: हाँ, उसमें ऐसा भोसले ने गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है।
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई
1: है।
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है। आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, ज्यादा बारह जुलाई तक शादियां हैं अभी।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, इस फरमाइशी गीत को हम जरूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करते।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते
0: जी,
1: सिवनी से बात कर रहा हूँ, राहुल ध्रुवे।
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: जिला सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नजदीक जो पड़ता है वो?
1: हाँ हाँ हाँ,
0: छिंदवाड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियो कॉन DTH के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी जी, और घर परिवार में कौन कौन है?
1: सभी है, मम्मी पापा।
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते हैं?
1: मैं अभी लगभग भोपाल को 1 साल से सुन रहा हूँ सर। मैं तो ज्यादा मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ
0: हूँ।
1: अभी भोपाल में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है मेरा, जो
0: जी
1: करेगी इसके लिए, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है। और आप पूरे 7 दिन चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मेरे को सबसे, जिससे आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ
0: जी,
1: तो ये जो भोपाल है इसमें 7 दिन चलाते हैं, ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो फॉलोअर्स हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गांव से शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है
0: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फोन आते हैं तो हमारे नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाती है। बताइए कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको जरूर सुनवाएं।
1: दीवाना, दीवाना मूवी का रहेगा सर।
0: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
1: तेरी अदा पे।
0: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है। और इस गीत को
1: सर आप किसको बात हो रही है?
0: आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
1: शिवम, हाँ। धन्यवाद।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी। नमस्कार
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी शिवम जी, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा बढ़िया ठीक हूँ। और आज लगभग 2-2.5 महीने की बाद याद आई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने
1: बात होती है,
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किसी वजहों से उनका फोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतजार किया।
1: हाँ जी बिल्कुल, और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी।
0: जी जी जी
1: जी, तो जून भी खत्म होने वाला, बताइए क्या हाल चाल है आपके?
0: हम बढ़िया हैं, हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे ये हम उम्मीद करते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
1: जी,
0: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद वो इच्छा पूरी होती
1: है। जी, आपने जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज जी, तो जी, आए।
0: जी जी, बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर?
1: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही है, और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार 3-4 दिन पहले
0: जी,
1: लेकिन अभी जैसी बारिश तो नहीं हुई है तो धूप बहुत ज्यादा है, और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही है अभी तो खरीफ की, और यही बुआई की लोग तैयारियां में है और मानसून का इंतजार कर रहे हैं।
0: वैसे देखा गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25-30 तारीख के आसपास, जून की जो तारीख है उसके आसपास ही सक्रिय होता है।
1: हाँ जी बिल्कुल, कल ही प्रादेशिक समाचार में सुन रहे थे कि 30 तारीख तक मानसून आ जाएगा, मतलब ऐसा बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले 2-3 दिन में बारिश जरूर होनी चाहिए।
0: चलिए, तो उम्मीदों की बारिश बहुत जल्द आपके यहाँ बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाए हम?
1: मोहम्मद रफी और लता जी ने गाया है तुम तो प्यार हो सजना।
0: अच्छा जी,
1: शायद दिल एक मंदिर फिल्म का गीत है।
0: बहुत मुझे खूबसूरत गीत आपने सुना चाहा है।
1: कैसा?
0: बहुत खूबसूरत गीत है।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है और अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा सदाबहार गाना है, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो सजना।
0: वाह कितने कितने खूबसूरत बोल हैं और उतनी खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाजें जिसमें रफी साहब और लता मंगेशकर की हो, गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
1: बिल्कुल, और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं।
0: बताइए, चलिए तो कुछ आप भी गुनगुना सकते हैं क्या?
1: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा।
0: चलिए मुखड़ा ही
1: जी, मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम तो प्यारे हो सजना, तुम तो प्यारे हो मुझे तुमसे, हाँ मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यारे हो सजना।

0: नमस्कार
1: सर
0: जी,
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील कौर जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर
0: जी, कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर।
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान,
1: इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना?
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ,
1: पहचान लीजिए। आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बजता रहता हूँ, लखनऊ भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, 2000 कुछ दे आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बात करना और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी,
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है, लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए, तो ये गीत हम आपकी नजर करते हैं, आपने फोन किया इसके लिए देते हैं आपको धन्यवाद।

0: जी नमस्कार।
1: हेलो हाँ जी नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल फोन करे जी सुने
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं। और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा जिला सागर मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहिरवार।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर मैं तो बढ़िया हूँ। और आप बताइए शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: जी
0: और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: बस सर जी अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट होगी सर जी हमारे।
0: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
1: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज्यादा होती, मक्का और उड़दा की।
0: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
1: हाँ हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगी हमारे यहाँ पे।
0: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
1: हाँ सर, समय तो निकाल लेते क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पाता है सर जी जरूरी।
0: चलिए, तो वो जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ भी मिलता होगा।
1: जी सर, सुनते हैं और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में लाते हैं सर जी। जो बातें जितनी बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
0: बताइए गोलू भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकाले?
1: सर वो एक गाना ही है, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा। किस फिल्म का गाना है
0: ये? मनोहार है, गुरु फिल्म की।
1: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार सर।
1: जी बताइए।
0: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किनसे हमारी बात हो रही है।
0: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, फालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी
0: जी, कैसे हैं सर आप?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
0: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया, थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
1: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकालें।

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम अजान बोल रहा गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है उलझावन।
1: इतनी दूर पड़ता है सीहोर से?
0: जी वो अपने नियर बाय आती पर से भद्दा रोड गया नहीं उसी पड़ता है जी।
1: अच्छा
0: भाई जी, मैं तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
1: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता, वो सदा बहार होता है
0: जी। वो तो परिवर्तन क्या परिवर्तन होता रहता है।
1: एक रास्ता से उब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
0: जी हाँ सर
1: जी। बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाए हम
0: जी? पुराने

कभी कभी। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस खंडे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत

से, जिसकी धुन बनाई है A.R. रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनर्रेस से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनुरथ रेखवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने शाजापुर से। ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रित, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजीनगर से मिला है, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाकड़, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जाविंद्र कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का, जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।

डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने।